आमें मेरी जात होची है मेरी पत होची है पर मैं इकला जरूर खटिया जेड़ा आम आदमी नू नहीं मिलता असी लोग आम जग्यासु जीव सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नू वेखदे रहने भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज दी समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं है जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे ओ सारी उम्र नस्सा फिरदा दौलत दे मगर पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर ये पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है कबीर साहब कहंदे हन होछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लियो मैला

तेरा नहीं की आख दी का किस नाम सिमर प्रभ अपना गुरसिख अमृत वेले उठ जा इशनान कर ते इशनान करके अपने प्रभु का सिमरन कर नाम दे विच लीन हो जा सिमरन दे विच जुड़ जा यही तेरी रहनी यही मर्यादा है यही गुरमत है तब इस नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय करोगा कोट बिगड़ लाथे प्रभ सरना पत्ते भय संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुपत

जैसे कपने कपड़े बुनने वाला जुलाहा एक एक तागे की तंद को जोड़ जोड़ कर कपना बनाता है, पर ऐसा भी हो जाता है जब ये तागों की तंदें उलझ जाती हैं तो कपड़ा बनना रुक जाता है। जो कपड़ा बनाने का कार्य है रुक जाएगा। जितनी देर तक इन उलझियों हुई तंदों को कोई सुलझाता नहीं, अपने आप तो जे उलझने मुकेंगी नहीं, सुलझाना ही पड़ेगा। इसको सुलझाने के लिए जिसको सुलझाना आता है वही सुलझा सकता है, पर जितनी देर ये सुलझेगी नहीं आगे का काम बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही मालूम होता है हमारे जीवन में उलझने ही उलझने हैं। वो सभी उलझने हमारी अपनी ही डाली हुई हैं। मनुष्य का जो बर्ताव है, स्वभाव है, इसने हमेशा ही सदा ही उलझने डाली है। सुलझाना इसको आता नहीं, और आत्मिक जीवन जीने के लिए सुलझाना बहुत अति जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। देखना कैसी उलझने हैं। फितर शब्द में बताया, श्री रूपी कुआं है, कूटा एक श्री रूपी कुआं है। जो कैसी उलझने हैं, कैसे सुलझेंगी, अपने आप तो सुलझेंगी नहीं। श्री रूपी एक कुआं है, उस कुएं में पांच चरखी लगी हुई है, पांच ज्ञान इंद्रों की, और ऐसी बुद्धि जो विवेक नहीं, जो बुरे और भले की विचार करने वाली नहीं, वो इस श्री रूपी कुएं से एक टूटी हुई रस्सी, टूटी हुई लज के साथ बुरी वासनाओं का पानी भरती जा रही है। और देखना रस्सी तो टूटी पड़ी, लेकिन टूटती जा रही है, लेकिन श्री रूपी कुएं से ऐसी बुद्ध जो विवेक नहीं, वो मंदी वासनाओं का, विकारों का, बुरे कर्मों का पानी भर रही है, परती जा रही है। एक पितृ शब्द में और बोला, ओह जे दिससे खूहड़ी कौन लाज बहारी, लाज घड़ी श्यो टूट पड़ी उड़ चली पनेहारी। पनिहारी क्या करेगी, जब रस्सी टूट जाएगी, लाज टूट जाएगी, क्या मिलेगा आपको, आखिरकार तो पछताना ही पड़ेगा। ऐसे ही उलझने हैं हमारी जीवन में, देखना किसी की 20 साल की लाज टूट गई, किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 60 साल की, कम हो गई आंखों वाली, इतना बूढ़ा हो गया अभी भी
बुरी वासनाओं का पानी भरता है, अभी भी विकारों का पानी भरता है, अभी भी इसको शांति नहीं। देखना हम जीवन में कितना कुछ खा गए होंगे, कितना पानी पिया होगा, कितना भोजन लिया होगा, कितने मेवे खाए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा है? सब कुछ खाकर भी हम भूखे के भूखे हैं। आखो भाई, इतना बूढ़ा हो गया, 60 साल की रस्सी टूट गई, आंखों में तो दिखाई नहीं देता। थाके नैन सरवन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाए। अखा आंखें जवाब देगी, देखता कम है, कानों में सुनाई नहीं देता। आज जो जीभ है बोलती नहीं, ततलाती है। आखो भाई, मात को क्या हो गया? बूढ़े की मात को सब बोलते हैं, ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी तो जो बुद्धि है ना, इसकी मात भी 72 की हो गई। ये बूढ़े को तो हम सोच भी सोचनी ठीक नहीं आती। सब कुछ इसका कम हो गया, बल कम हो गया, इसके जो ज्ञान इंद्रे वो साथ नहीं देते, कर्म इंद्रे भी साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी माया का मोह नहीं टूटा। आखो भाई करो, अभी भी माया के मोह की जाल के गिरफ्त में अपने आप को बांधा हुआ है। एक ना थाक समाया, एक पितृ शब्द में और बोलते हैं। एक कुआं में एक गिर गया, बहुत अंधेरा था, उसको अचानक अचन चेत एक लज एक रस्सी हाथ में आ गई। उसने सोचा काम बन गया, अब तो बाहर निकल आएंगे। क्या देखा, जब ऊपर चढ़ने लगा, उस बंधी हुई रस्सी को पकड़कर वहां एक तुपका तुपका तुपका शहद का डिग रहा था, माखियों का डिग रहा था, वो उसकी जबान में आ गिरा, उसको मीठा लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, बाहर तो फिर आ जाएंगे, पहले हम मीठा खा लें। वो मीठा खाने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ, जहां पर वो रस्सी बनी हुई थी वहां एक चिट्टा चूहा, एक काला, उस रस्सी को काट दिया। ओ खूह में डिग पड़ा। ऐसे सतगुरु बोलते हैं, अनदिन मूसा लाज चुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। देखना संसार रूपी कुएं में हम गिर पड़े हैं, श्वासों की रस्सी हमें मिली। इस मनुष्य जामे को सफल बनाने के लिए हम तो अपनी जीभ के चस्कों, पदार्थों के लोभ के इतने मस्त हो गए, हम कि श्वासों रूपी लस्सी तो टूट गई पर हासिल कुछ नहीं किया। ऐसे एक दृष्टांत एक महात्मा देते थे हमें, जब हम छोटे थे। कहते एक सांप के मुख में एक मेंढक आ गया, उस मेंढक ने अपना मुख खोल लिया। दूसरे मेंढक ने पूछा, ये क्या करें, आप तो मरने लगे हैं, तो आपने मुंह क्यों खोला? कहते क्या पता मरते मरते कोई मच्छर मुंह में आ जाए। आखो भाई, ऐसा हमें बताया गया। बूढ़ा तो हो गया, देखना किसी समय भी अंत काल आ सकता है। आखो भाई करो, पर हम ऐसी उलझन में बंधे हुए हैं कि हमें आयु तो कम हो रही है लेकिन वो बुरे विकार कम नहीं हुए।
वो ऐसे ही है। देख लेना, किसी को ये बताओ, कभी कहकर देख लेना, अरे भाई नाम जप ले, अखो भाई करो, बहुत कुछ खा लिया पी लिया, अब तो नाम जप ले, किसको पूछ ले। हम भी कहते हैं, आप भी पूछ कर देख ले। हम पूछते हैं, एक ही हमें उसका जवाब मिलता है, क्या करें, अभी नहीं, अभी तो हमने बहुत काम करने हैं, अपने कुटुंब को पालना है, उसको काम लगाना है, अभी तो हमारे सिर पर, हमारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमारे कंधों पर। हम सब काम कर लें फिर हम नाम जपेंगे, पहले तो काम तो मुका लें, काम मुका लेंगे, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर लेंगे, जिम्मेदारियों को तो फिर कर लेंगे, नाम जप लेंगे। लेकिन उससे ये पूछना चाहिए, क्या किसी ने गारंटी ली हुई है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे। किसे ने ऐसी गारंटी ली है कि हम सब जिम्मेवारियों को पूरा कर मरेंगे। हमने तो देखा है केते गर्भ गले, हमने देखा कितने बालिक कितने जवान जौवन भर में चले गए संसार से। पितृवाणी में क्या है, नए बारिक नए जोबन नए बिरदी कछ बंद, ओ वेला न बूझी है जो आए पर जम फंद। कितने आए कितने चले गए, ये भी बताया गया, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्म है सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्त्र है थिया। देखना, जब किसान बोता है ना, उसको ये यकीन है, भरोसा होता है कि जो मैं बोआ है उसको काटना जरूर है। हर किसान जो भी हो, जो धरती में बोता है, ऐसा भरोसा करता है एक दिन उसको काटना है। जो जन्मे सो जानो मुआ, ऐसे ही जिसने जन्म ले लिया, यकीन करना उसने एक दिन मरना भी जरूर है। जिसने भी जन्म ले लिया वो मरेगा। जब हम ने देखा एक खेत में, एक खेत का रखवाला किसान ने वहां पर बिठा दिया राखी करने के लिए, जब राखी करने के लिए वो गया, उसके जाने से पहले उस खेत में ऐसी फसलें थी जिनको ऐसे फल लगे हुए थे जो पक रहे थे, और उसके जाने से पहले ऐसा भी देखा उसने, ऐसी फसलें भी थी जिनको फूल आए हुए थे, फूलों ने फल बनना था। उसने देखा ऐसी फसलें भी थी जो धरती में पुंगर रही थी, उसके सामने भी बोई गई। देखो रखवाला तो खेत की राखी करता है, किसी को भी खेत में अंदर नहीं जाने देता। कच्ची फसल तो क्या, वो पक्की भी काटने नहीं देता, लेकिन खेत का मालिक आ जाता है, खेत का मालिक आकर उस खेत में जाता है, राखी करने वाला उसको सलाम भी बुलाता है। राखी करने वाले के सामने सामने क्या हो रहा है वो देखता है, ये मालिक के क्या हो गया, इस किसान को क्या होगा, ये पक्की फसल की बजाय कच्ची क्यों काट रहा है। अखुवाई करो,
लेकिन राखी करने वाला मजबूर है। वो तो ये बोलता है ये मालिक है, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे समझा सकते हैं, ऐसे ना करो ऐसे करो। ऐसे ही जब हम संसार में आए, हमारे आने से पहले हम हमारे बुजुर्ग माता पिता दादा दादी आदि ऐसे बुजुर्ग आए हुए थे, हमारे आने से हमारे घर में बहनें आईं, आखू आए, मेरे भाई आए, मेरे आने से मेरे घर में बेटी आई, बेटे आए। देखो हम आए, सब परिवार देखा, किसी की क्या मजाल है, हमारे किसे छोकरे को किसे बुजुर्ग को कोई बोल सके, हम झगड़ा करते हैं। लेकिन जब मालिक प्रभु आप आ जाता है, वो क्या करता है, कभी 5 साल का बूटा ले जाता है, कभी 10 साल का ले जाता है, कभी 50 साल का ले जाता है, कभी 60 साल का ले जाता है। हम क्या करें, हम तो यही बोलते हैं, जिस ठाकर सियो नहीं चारा ताको की जय सत नमस्कार। हम तो यही बोलते हैं, नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगी है सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। जिथे बहस नहीं कर सकते, आगे कुछ नहीं कह सकते, वहां पर तो चुप ही करनी पड़ती है। ऐसे भी हो जाता है खेत वहां पर ही रह जाए, रखवाले कोई ले जाए। ऐसे भी हो जाता है परिवार यहां ही, हम अपने आप को उस परिवार का मुखी मानते थे, वो मुखी कोई ले जाता है। इसलिए समझाते हैं, आप तो कहते अभी तो नहीं, हम जिम्मेदारियों को पूरा कर मरेंगे, फिर नाम जप लेंगे। अरे भाई कैसे जपेगा, जब नैनो नीर पहे तनखीना पे केश तुदवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी, जब आपका गला खाऊं खाऊं करेगा फिर जप लेगा, आंखों में पानी निरंतर बढ़ेगा बहेगा फिर जप लेगा, नहीं जप सकेगा। कहते अरे भाई मैं आपको बात बताता हूं, आपने तो क्या करना है, क्या निभाना है, आपके जो शरीर के अंग है ना, उन अंगों ने ही आपको वेला कर देना है। भाई गुरदास भी बोले, अन्ना लूला पिंगला तन थक्का मन दै दिसता, आंखें होते हुए अंधा हो गया, पैर होते हुए लंगड़ा हो गया। मैंने तो देखा, आपने देखा है, जब बालक था तब भी सहारे की जरूरत होती थी, बूढ़ा हो गया अब भी। बालक अवस्था में दांत नहीं थे, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में भी कांपता था, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में तत्लाती जबान से मांगता था, बूढ़ा हुआ तब भी। अरे सोचो भाई, जब नाम जपने का समय है क्यों नहीं जपते। आखो भाई ऐसी उलझन में बंधा हुआ, आज कह रहे हैं, कायरे मन बिखिया बन जाए, विषय विकारों के जंगल में क्यों जा रहा है। आखो वाहिगुरु, अरे नाम क्यों नहीं लेता परमात्मा का, जिसने आपकी हर समय सहायता की है, सहाय हुआ है, आगे भी होगा।
भूलो रे ठग मूरी खाए। एक बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे लगता है इस मनुष्य ने परमपिता परमात्मा को गवाया नहीं, भुलाया है। आखो वाहेगुरु। मैं फिर बोल दूं, इस मनुष्य ने प्रभु को गवाया नहीं, भुलाया है। देखना जी, हमने गवा दिया होता ना, एक बुरकी भी हम मुख में नहीं डाल सकते। आखो वाहेगुरु। उसको गवाकर तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, उसको गवाकर तो हम बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते।

भूलो रे, देखना ये भूला नहीं, इसको भुलाया गया है। मानमुख भूले भुलाई है, भूली थोर न कर। सवाल करने वाले ये करते हैं, आप कहते हो भुलाया गया तो किसने भुलाया है? आखो भाई, आपने ये बोला कि भूला नहीं भुलाया गया है तो किसने भुलाया? ताई साहब कहते हैं, बाबा माया भरम भुलाए। आखो भाई, इसको माया ने भुला दिया, माया ने पुलावड़ों से पुला दिया। भुलावड़े भुली पुल पुल पच्छो ताणी, फिर छोड़ अड़ी सुती फिर की सार ना जानी। ए माया के पुलावड़ों में भूल गया। फिर सवाल करते हैं, ये तो 84 लाख जूनों का सरदार था, इसको तो सब बोलते थे बहुत सुंदर, बहुत चतर, बहुत सियाना, ये भूला क्यों? क्यों भुलावड़े में आया? आखो भाई, ये भुलावड़े में क्यों भूला और कैसे भूला? जब हमें ये बोला, भूलो रे ठग मूरी खाए। आखो भाई, इसको माया ने कैसे भुला दिया? कहते हुआ क्या, इस माया ने इसको ठग मूरी ठग बूटी सुंगा दी। आखो भाई, जय ऐसे समझ लें कि इस माया ने इसको ठग बूटी खिला दी। ठग ओरी भूलो रे ठग मूरी खाए। ए पलावड़ों में आकर भूल गया, इसने माया की ठग मूरी खा ली, ठग बूटी खा ली। कहते फिर क्या हुआ? कहते रतन पदार्थ खोया ठगया मुठा जाए। कहते हुआ क्या, जब इसने ठग बूटी खाई तो इसका रतन पदार्थ ज्ञान का पदार्थ जो इसको सूझ थी वो जाती रही। ये तो ये भूल ही गया कि मैं इंसान भी हूं कि नहीं। ये भूल ही गया कि मैं मनुष्य भी हूं कि नहीं। देखना, मन करके मनुष्य है, तन कर नहीं। मनुष्य होता ही मन कर। जे अगर मन वाला मनुख होकर मनुष्य होकर मन को नहीं पहचानता, सिर्फ तन को पहचानता है, तो इसकी वृत्ति पशु वृत्ति है। जे मन वाला मनुष्य होकर आत्मा को जानता है तो महात्मा है। जब हम मन वाले मनुष्य होकर सिर्फ तन को देखेंगे, मन हमारा जरूर मैला होगा। जब मन वाला मनुष्य मन को आत्मा की ओर ले जाता है तो मन निर्मल हो जाएगा। हमारा मन मैला क्यों है? कि हम तन की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों को देखते हैं, शरीर में रहने वाले को नहीं। आंखों भाई, हम शरीरों को तो पहचानते हैं, जो शरीर में आप नारायण रहता है उसको पहचानते ही नहीं। आखो भाई, जो इस मंदिर में भगवान रहता है उसको तो पहचानते नहीं। तो फिर मन मैला होता है, उसके पहचाने तो बिना मैला होगा, जरूर होगा, होता रहेगा। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। अब कहते हैं कि ये बहुत सियाना था, 84 लाख जूनों का सरदार, फिर इसने ये ठग मूरी क्यों खाई? तो आज के शब्द में कहते ऐसे हुआ, जैसे मीन पानी में रहे काल जाल की सुध न लहे। जैसे मछली पानी में रहती है, पानी में

सैकर भी ये नहीं जान सकी कि पानी हमारा जीवन है, ये भी नहीं जान सकी ये जो जाल डाला गया है ये हमारी मौत है। मैं नहीं कहता, सतगुरु कहते हैं, मछली जाल ना जाने या, सर खारा असगाह, अत सियाणी सुंदरी क्यों कीतो विसाह, कीते कारण पाकड़ी काल न टले सिरा। हुण अपने कीते कारण पकड़ी गई है, बड़ी सुंदर सी, सियाणी सी। सतगुरु कहिंदे इसने भरोसा क्यों कीता? अगली पंक्ति विच बोले भगत जी, जे बा स्वादी लीलत लोहो, अपने जीव दे स्वादां करके मारी गई। ए मछली अपने जीव दे स्वादां करके मारी गई, ऐसी जीव दे स्वादां करके मारी गई कि लोहे दी कुंडी नूं ही निकल गई ते शिकारी दे जाल विच फस गई। जे बा स्वादी लीलत लोहो, लोहे दी कुंडी नूं निकल गई। ते साहिब बोले, भाई रे इउं सिर जाणो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। आखो वाहिगुरू, जिवें मच्छी ते जाल पै जांदा है। आखो वाहिगुरू, अचिंता ही। इसी तरह समझाते हैं हमें, ऐसे करो। आखो वाहिगुरू, ऐसे करो भाई। ये मनुष्य भी नहीं जान सका कि परमात्मा की बंदगी हमारा जीवन है, माया का जाल हमारी मौत है। ये जान लेता तो परमात्मा की बंदगी में लीन हो जाता और जीव के चस्कों और पदार्थों के पोगों के लालच में ना आता। ऐसे बोले हैं भगत नामदेव जी, जैसे ए मछली जीव के स्वादों के कारण पाकरी गई, शिकारी के जाल में आ गई, तैसे ही ए मनुष्य पदार्थों के पोगों और जीव के चस्कों लाभ और लोभ की गिरफ्त में बंधा हुआ। ऐसे कनक कामनी बांधियो मोह, सुंदर स्त्री और पदार्थ सोना आदि इस दे मोह पा माया दे मोह दे रूप रंगा विच इतना मस्त हो जाता है कि इस नूं अपना आप भुल जाता है ते माया दे जाल विच। आखो आए अपने आप को भुलाकर माया के बंधन में आ जाता है। और फिर आगे समझाते हैं, कहते देखना, जिमें मधुमक्खी शहद की मक्खी। आखो वाहिगुरू, शहद तो इकट्ठा करती है, दूसरे को डंग मारकर, दूसरे को जहरीला डंग मारती है। और इसे मालूम नहीं, इस मक्खी को मालूम नहीं आखिरकार क्या मिलेगा, आपके मुख में स्वा तुआ, लेने वाला और कोई ले जाएगा। ऐसे ही समझाते हैं, जैसे गौ अपने बछेरे के लिए दूध संचन करती है पर अहीर आता है गला बांध कर ले जाता है। फिर समझाते हैं, आप तो माया के कारण बहुत संचन करने के लिए बहुत कालना कालते हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन आपने समझा नहीं एक दिन ऐसा होगा धन तो धरती में ही दबा रह जाएगा और आपका तन ही मिट्टी बन जाएगा। आंखों भाई कहते, एक धनी था, उसने बहुत धन संचन किया। ऐसे धनी ने संचन कर
एक पीपे में उस धन को संचन कर धरती में गाड़ दिया और ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाता, किसी को देखने ना देता, अपने कुटुंब के किसी भी रिश्ते वाले को देखने नहीं देता, बहुत उसकी राखी करता। सारा जिंदगी ही, सारा जीवन ही उस माया को संचन करने में गुजार दिया। कहते एक दिन ऐसा हुआ, जमदूत उसको लेने आ गए। वो बोला, ऐसे करो भाई, मुझे छोड़ दो, इस तन का 1/4 हिस्सा ले लो। जमदूतों ने पीटा, ये धन आगे नहीं जा सकता। कहते आधा ले लो। फिर पीटा, कहते पूरा ले लो, मुझे छोड़ जाओ। फिर पीटा, कहते भाई ये अगर मुझे नहीं छोड़ते, एक बार मुझे देखने तो दो, दारा है और बोलता है, अरे माया आप तो बहुत पत्थर दिल निकली, आपने क्या किया, मैंने तो सारी जिंदगी सारा जीवन आपकी राखी की, लेकिन आप दो कदम भी मेरे साथ नहीं चलती, कैसी आप पत्थर दिल निकली। माया बोली, अरे मैं क्या करूं, आपने मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मुझे बनाया था भूखों को भोजन खिलाने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था दुखियों की सेवा करने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था लोड़वंदों की लोड़ पूरे करने के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, पर आपने मुझे धरती में गाड़ दिया। मैं तो प्रभु से ये निवेदन करूंगी, आपको भी परमात्मा धरती में गाड़ दे। धन धरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तिष्णा अत जरै, साध संगत कब हूं नहीं करै, कहत नाम देव तांची आन, निरपो निरपय हुए भजिए भगवान। भक्त नामदेव जी हमें समझाते हुए ऐसे बोलते हैं, अरे भाई जे जीवन जीते हुए भगवान का सहारा ले लें, भगवान का आसरा ले लें, भगवान के नाम धन की कमाई करें, शरीर तो आगे नहीं जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा। कहते पर ये बात नाम तन कमाने की और आत्मक जीवन की जुगत की तब ही पूरी होती है जब हमें अब मोहे मिल्यो है जियावन हारा, जब पूरा सतगुरु मिल जाता है। पूरा सतगुरु मिल जाए, जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितृ शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।

सागर ज्ञान दा, सागर आत्मक सुखां दा, सागर अकाल पुरख दी सच्चाई ते वडियाई दा, सागर सच्ची ते सुच्ची बाण।

लोटा गुआच गया, पैसे गुआच गए, ता सारे पांड सिद्धां को लगाए, साडा लोटा लप दियो किसे ने चुक लिया, हुण लुकोया सिद्धां नहीं सी, लभ के किवें देंदे। सिद्धां ने लुको ए लोटा, सिद्धां ने लोटा जान के लुकोया सी, असी लुकोवांगे, भंड साडे कोल आणगे, असी भेजांगे गुरु नानक दे कोल। साडा लुकोया लोटा कोई लप नहीं सकदा, ते गुरु नानक हार जावेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओही गल सिद्धां ने पंडा नूं कहा, ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है, जाओ ओहदे कोल, उस नूं आखो जे ओहदे विच कोई शक्ति है ते तुहाडा लोटा लभ देवे। ये सारे पांड धन गुरु नानक साहब दे कोल गए ते बेनती की, महाराज साडा माया वाला लोटा लभ दियो, किसे ने चुक लिया। तां भाई गुरदास जी बयान करते,

आखो सतनाम श्री वाहे। पंडा ने बेनती की, बाबा जानी जान पुरख, वो बाबा नानक वो ते जानी जान। सिद्धा ने जिथे लोटा लुकोया सी, गुरु नानक साहब ने उथों कढ दिता। हुण लोक जय जयकार करन लग पे। सिद्धां दा लुकोया लोटा कोई लब नहीं सी सकदा, पर बाबे नानक ने लभ दिता। गुरु नानक दी जय जयकार होण लग पई, पर सिद्धां नूं होर गुस्सा चढ़ गया।

तू पखंड करना पेख उतार उदास दा। पहला तू उदासियां वाले कपड़े पाए हुण संसारी कपड़े पा ले। पंगरनाथ कहंदा है ऐ नानक तू ग्रिस्ती है तू व्याह कीता है तेरे बच्चे हैं तो जिहड़ा ग्रिस्ती है तियां पुत्रां वाला वह रब का भगत नहीं हो सकता वह जोगी नहीं हो सकता वह संत नहीं हो सकता। यह गल पंगरनाथ ने कही। हुण सत्संग तुसी सारे ग्रिस्ती बैठे हो तियां पुत्रां वाले परिवार वाले पंगरनाथ का यह सवाल भी सुन लो। पंगरनाथ कहंदा है ग्रिस्ती उच्चा नहीं हो सकता ग्रिस्ती रब का भगत नहीं हो सकता जोगी नहीं हो सकता संत नहीं हो सकता ग्रिस्ती माड़ा है। यह पंगरनाथ का विचार है जोगियां का विचार है तो गुरु नानक का की विचार है वह भी सरवण करो।

असल विच कुछ जोगी होए महापुरुष जेड़े अपना जप तप गुआ बैठे औरत ते मोहित होके। हुण जे कोई अपना जप तप गुआ बैठा तो उहदी अपनी कमजोरी। इन्हां लोकां ने यह नियम बना दिता कि औरत जिहड़ी है भगती दे राह विच रुकावट है। इसे वास्ते कहो जिहा दौर चलिया कि औरत नूं यह कह दिता गया जिथे रब फेल हो गया उन्हें औरत बना दिती। औरत भगती दे विच विघन है। इथों तक लिखिया गया कि रब जिते फेल होया उथे औरत बनाई। किसी ने कहा औरत रब की एक मजेदार गलती है। किसी ने कहा औरत पैर की जुत्ती है। इथों तक कह दिता टोर गवार शूदर पशु नारी ये पांचो ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास वर्गे महापुरुष भी कह गए कि औरत पशु मूरख ते शूदर इन्हां नूं ताड़ के रखना चाहिए। उन्हां दी निगाह विच औरत पशु मूरख ते शूदर विच कोई फर्क नहीं। पर धन गुरु नानक साहब कहन लगे नहीं, यह गलत है। यह कैसा तुहाडा समाज है किधरे औरत नूं देवी बना के पूजदे हो ते किधरे औरत नूं पैर दी जुत्ती कहंदे। किधरे कहंदे औरत भगती विच रुकावट है। गुरु साहबां ने सारे बंधन तोड़ दिते ते कहा नहीं औरत भगती विच रुकावट नहीं, औरत भगती दा राह सुखाला कर दी। देखो बेबे नानकी धन गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी जद गुरु नानक साहब उदासियां वास्ते चले ते बेबे नानकी ने पैसे दिते सन गुरु नानक साहब नूं रबाब बनाण वास्ते कि वीर जी तुसा दुनिया दा पार उतारा करना है ते जिहड़ी रबाब तुसा बनवाणी है उहदे वास्ते पैसे मैं देवांगी ताकि धर्म दे काम विच पहला हिस्सा मेरा होवे। आखो सतनाम श्री वाहे। ते माता केवी उन्हां दा कैसा जीवन गुरु अंगद साहब जी दे सुपत्नी गुरु अंगद साहब नाम दा लंगर वरतांदे ने ते माता खीवी अन्न दा लंगर वरतांदे। गुरु अंगद साहब नाम दे नाल जोड़दे ने ते माता खीवी लंगर दी सेवा करदे। गुरु अर्जन देव जी महाराज संगतां दा पार उतारा करदे ने बाणी नाल दर्शनां दे नाल ते माता गंगा आप चक्की चला के कणक पी के लंगर विच आटा पांदे सन। सत्संगत जे धन गुरु नानक साहब दुनिया दा पार उतारा करन वास्ते तुरे ते गुरु नानक साहब दी सुपत्नी धन माता सुलखणी किन्ने साल पति दा घर बह के इंतजार कीता बच्चियां नूं पालिया कि मेरा पति दुनिया दा पार उतारा करन गया ते धन माता गुजरी जिन्हां 26 साल ते कुछ महीने

जुड़ गया कलगीधर पातशाह जी दे चरणा विच। ते फिर आप मुंह कुछ बोल उठे, कहन लगे जवानी गई बुढ़ेपा आया, उम्रा लगी किनारे, पर जेड़े बीते नाल तुहाडे सोई भले दिहाड़े। हे कलगीधर पातशाह, दिन ता ओ सन जो तेरे चरणा विच बीत गए, बाकी उम्र ता उमस्या दी काली रात वांगू बीती मेरी, इसलिए जवानी गई।

अपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले। अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन परमावे। तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आ गए सुख पावे। तनवंता होए कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे। बौ लस्कर मानख ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश। सबते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगे परवान। कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले विरधारे। अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतार। अनेक जतन कर आत्म नहीं धरवे हर दरगे को कैसे गवे। आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जाका मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए। जबे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचर ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु के पाते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस कटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे पढ़ापत होए। कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार। जैसी दिष्ट करे तैसा होए आपे आप पर सोए। जो किच कीनो सो अपने रंग सबते दूर सबु कै संग। बूझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए नानक सद ही रह समाए। आप उपदेश है समझे आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार। उसते पिन कहो किच होए थान थनंतर एक है सोए। अपने चलत आप करने हार कौतक करे रंग आपार। मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सबकीना कोट मदे किने बिरले चीना। पला पला पला तेरा रूप अति सुंदर अपारे अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जिहड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवां। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप

धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलूं, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा ते हुक्म करदा भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना

कोई ना रखें। विश्वास घाती अकिरत कण, विश्वास घाती किसी कहने जेड़ा किसी प्यार विच लिया के वसा के मारे, अपना बना के मारे।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा इस शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नूं असी जो खो चुके हां, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब तक ही जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों, उस दी मंजिल नालों, उस दे डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वद्दी ही जाए, वद्दी ही जाए, वद्दी ही जाए, इसका अर्थ ए होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि ओ जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मुतलक कि तुहाडी हालत ए है कि तुहानू ए पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए, इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड्डी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा, जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद की घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी का कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ये भी आत्मा की खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक की लोड़ है, साडी आत्मा नू ही परमेश्वर के नाम की लोड़ है। वो नाम का भोजन छकती है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है। पर वो भोजन नाम का छकती है। उच्चारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तो की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए उस तरह एवें किसी नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह छान बीन कर लैनी चाहीदी है भी किधर जांदी है। तां राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। ते राणी ने समझिया भई हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है। राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया भई चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदी, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाओ चुक के घर ले आंदी। भई पुछांगे भई तेरी दूजी खड़ा किथे है। ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नूं बंद कर दिता। राणी जदों कीर्तन सुनदियां कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी। जदों पुछेगा भई दूजी खड़ाम किथे है तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाओ मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह।

0: टेक है क्या गुण तेरे साथ माली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

मेरे हिरदे च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इन्ना जानना कि तेनू बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेनू जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है, ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होण वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा, ना मेरे कोल रूप है, ना मेरे कोल अखां ने, ना अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल ज़बान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सकां। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हथ पैर भी सिधे नहीं। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, उहदी शोभा भी कादी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां, जद ए जानना कि तेरा बिरध बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा।